सुख सागर पूरन परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही। अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी। कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना। ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कबै न उस्तत करे। निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों

हो आप दयाल मनोना विसारयन सात जना के संग भौजल तारयन सागत निंदक दुष्ट।

0: बैठे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पेरने की चुग्गी पहुंचे भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जी पीलनी भुख लगी है आखो श्रीवाल पीलनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी। बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जप के नाम दी प्राप्ति नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां जेड़ा तुरे है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है कदे ना कदे सी जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरिया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा गली बाती तो पहुंचिया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातर से जाइए गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है और भाई महापुरुषां दा कथन है गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार ए तो बड़ी करड़ी मंसल है औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साई दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुकम फुहार कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा है ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे साध जना की सेवा लगी

सखी काजल हार समोल सबो किछ साजिया सोला किए सिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत सबो किछ पाइए हरे हां कंते बाज सिंगार सब बिरथा जाइए। पंजे पातशाह धन गुरु अर्जुन देव दाता जे साई घर नहीं आया ता सिंगार किस देखे ते गुरु नानक दा प्यार अंदर आके नहीं वसया ते दुनियावी पदार्थ किसे लिखे नहीं किसे लिखे हरी दे दिल च खिच पई लबदा लबदा इस माता कोल पहुंच गया। आ बेटा फरीद अज किवें आया है मां मैं सुने तू दस देंदी है अज रब तुठा है या अज रब रुस गया मैनू भी दस रब नू मनाण वास्ते कई तरह दियां गालना गालियां पर मेरा साईं अजे नहीं मनीजिया रुसिया फिरदा है पर तू दस। तो इस माता ने किया बेटा फरीद बैठ जा बैठ के तो माई प्राप्ति वाली सी प्राप्ति वाली बाबा जी बचन कर रहे सन भाई गुणा दा पूजन गुणा दा पूजन कई माइया ऐसिया उच्च जीवन वालिया सिमरन वालिया जिन्हां दे दर्शन कीतिया चेते आउंदा है सतनाम सूरवीर माता भागो वर्गी ए भी इहो जी कहन लगी फरीद की पुछदा है मां मैनू ये दस वे रब टुटदा किवें

रहत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ तू जय लगे, हर नाम छोड़ तू जय लगे। इनके गुण हो क्या कहूं।

प्राणी पिता माता धर्त महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म अधूरे करमियाँ।

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर की रीसै होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़ी।

इतनियां गलतियां कीतियां पिछले जन्मां विच कि मुड़ के ओही गलतियां इस जन्म विच कर रहे हैं। ऐ जरा रेडियो बंद कर दियो, विच चल रहा है, टेप नूं चलाण तों पहला वेख लिया करो। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह आखदे पहला गलतियां कीतियां हुण मुड़ के गलतियां कर रहे हैं, ते दाता जे तू बख्शना है ते बख्श लै, नहीं तां साडे लई तां अगे जुतियां तैयार। पातशाह गुरु नानक देव जी आखदे

न दुर्लभं स्वर्गराजन न दुर्लभं भोजनं बीजनं न दुर्लभं स्वच्छ अंबल न दुर्लभं सुत मित्र परात माधव न दुर्लभं बंता दिलासा न दुर्लभं

मेरा तन गुरु नानक पास है। कलयुगी जीवन के उद्धार करने वास्ते जा रहे सोलह कला संपूर्ण फैलिया अनंत कला हो ठाकुर सगे

गर्व ना कीजे नानका मत सिर आवे करोड़िया। तो केड़ी चीज का माण कर जवानी रे, जवानी सदा नहीं रही, आउंदी है चली जाए। ये झूठा हुकूमत का माण कर दे। इस संसार च बड़े बड़े राजे महाराजे आए जिन्हों का नामो निशान नहीं है, माया का माण करदा यह भी झूठा हुआ। माया तो चलता पानी यह माण भी थी। धर्मकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता, चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं। याद रख एक दिन पछताए। साहबा का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने सुने। पत्थर वर्गा मन पानी काठी सिर तो रख दिती, दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा ते रोण लग, पातशाह मेरे बख्श लो मैं पापी, मेरे कोलों कुल हो गए, अपने चेहरे के दाग जेड़े दिखते जे शीशे कोल जाइए, शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता। इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हां दा पता ता लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए। महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो। अभी धन गुरु नानक पातशाह जी धर्मकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रहे, घुब्बा मार के रोई जाते। कहता है पातशाह मेरे बख्श, अरदास कर आओ आप भी करिए। किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पड़ता है। पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी संगत।

0: जो गुरु का देश सैबा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश को हिरदे च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखिए पर लोग सुहे ने हर पल आते मिले और पहली सात संगत जिथे होस्टल दिया संगत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साहेब अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर भाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उसे कोई विच नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन चल रही है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन भी भेज शब्द आदर कर दे डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चिया सिखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता।

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। ओढ़े वस्त्र काजर में

जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया तिन सुख सद होई, जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई।

जिनका कीता माटी ते रतन, गर्भ में राख्या जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वड्याई, तिस प्रभ को आठ पहर ध्याई। रमैया रेन साध जन पावो, गुरमिल अपना खसम ध्यावो, जिन कीता मूड़ते भक्ता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवै निध पाई, सो प्रभ मन ते बिसरत नाई। जिन दिया नथावे को थान,

जीव जिया। सोख्यम बिस्वै जे अग्न में रखे, गुर प्रसाद को बिरला लके। सोख्यम बिस्वै जे बिकते काढे, जन्म जन्म का टूटा गांठ है। पूरे तर है बुझाया, अब अपने

करुणालय है अर्थालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार पाप हरणे करुणा में सब दुख हरो।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो और अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पै कहिए।

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ पस

कबूत करते लोग हटाए ठाड़ भयो मैं जोर कर वाह वाह गोविंद सिंह ठाड़ो।